उजाला रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन ऑफ उजाला बिंद नाउ उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो डीएबी प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ।

हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

0: let me.
1: ना ना ना ना गुरु छोड़ मुझे मत जाना, अरे ना ना ना ना ना ना गुरु छोड़ मुझे मत जाना। प्यार से तेरा दिल भर देगा ये तेरा दीवाना, अरे प्यार से तेरा दिल भर देगा ये तेरा दीवाना, अरे ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना।
2: बे लड्डू बोल लड्डू, अरे लड्डू लड्डू लड्डू
1: लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू। एक नजर है एक हंसी है कीमत किसकी बंधु, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू। दिल का रंग जिगर के टुकड़े अरमानों का हीरा, दिल का रंग जिगर के टुकड़े अरमानों का हीरा, इनको लेकर बांधे लड्डू खाए दास कबीरा। रे पर देखो देखो आहा आहा, रे पर देखो देखो आहा, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू।
2: अबे हट, खाली जिसका पेट उसका प्यार से खाली बोल, और इस लड्डू में दुनिया का हर ऐश दिया है घोल। सब जय जय इसका बोल, सब जय जय इसका बोल, सब जय जय इसका बोल। सोने का लड्डू
1: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
1: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
1: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
1: प्यार का लड्डू,
2: सोने का लड्डू,
1: प्यार का लड्डू,
2: सोना
1: प्यार,
2: सोना
1: प्यार,
2: सोना
1: प्यार,
2: सोना।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is weinig aan de hand op dit moment op de wegen. Een paar korte files. Wat opvalt is de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Haps en Boksmeer staat een auto met pech. Dat 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En de A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontroles daar een kwartier op onthoudt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: कुछ साए कुछ परछाइयां कुछ चाहत के सजदे कुछ बहते बादलों पे रखी उम्मीदें बरसती रहीं तरसती रहीं चांद आसमान में जड़े सुराख की तरह झांकता रहा और रात किसी अंधे कुएं की तरह मुंह खोले हांफती रही रास्ते पांव तले से निकलते रहे न रुके न थमे न रोका न पूछा जिंदगी किस तलाश में है जिंदगी थकने लगी है और ये जिंदगी का जुड़वा उसकी उंगली पकड़े शहर की नंगी सड़कों पर अभी तक कुछ बीन रहा है कुछ ढूंढ रहा है।

जब से बलम घर आए तो जियरा मचल मचल जाए। लता जी की आवाज में गीत आप सुने, फिल्म आ

हमारे सभी सुनने वाले को हर को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वालों, मैं हूं सुभाष और जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है वहां तक हम आप सभी को प्यार से, दुलार से, दिलोजान से स्वागत कर रहा हूं। वेलकम।

बेलियर कितना मोई अल्फांस बोले तू के कितना हम चाहे लो और तू कभी सोच ना सके। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुनोलो। और चलिए अब की बार अरिजीत सिंह एंड अलका याग्निक जी के आवाज में ये खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे।

बलियार, ये उन दिनों के बात है जब हम पागल पागल फिरते थे। सोनू निगम एंड देखा जाए शरिका कपूर की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुन रहे थे, ये उन दिनों की बात है यार जब हम तो पागल पागल फिरते थे। उजाला रेडियो का प्रोग्राम है

बेलियर सुन रहा है और इस तरह से श्रेया जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने। यू आर का फोन का नंबर है हर एक काम काज के लिए, फरमाइश या इत्यादि इत्यादि के लिए, तो 9204090807 पर आप लोग तार कर सके हैं हर एक काम काज के लिए यार, या तो हमारा वेबसाइट पर आप जाइए www.ujala.nl पर हर एक जानकारी आपको मिल सकेगा। एंड चलिए इस बार अरिजीत सिंह एंड श्रेया जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे

वेल बलियर तू जो हाथ में हाथ दे गया अवसरों से अरिजीत सिंह और श्रेया जी के आवाज़ उसमें गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे।

0: बल यार, ये दुआ है मेरी रब से कि मेरी आशिकी में पसंद आई। आयुषरा से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, कुमार शानू एंड अलका याग्निक जी के आवाज में, यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम है यार।
1: And press the bell icon.
0: और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाने वाले हैं, एक और खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे यार। और यू आर उजाला रेडियो का फोन का नंबर है 9 3 9 9 0 7 पर आप लोग तार कर सके हैं हर एक काम काज के लिए। हमारा दफ्तर खुला रहता है सोमवार से लेकर शनिवार तक, सुबह में 10 बजे से लेकर शाम में 3 बजे तक, van maandag tot en met zaterdag van 10:00 's morgens tot 3:00 in de middag.

वेल वेल यार, तेरे संग यारा। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और खास करके आतिफ असलम की आवाज में। चलिए अब की बार तो देखा जाए गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो अब की बार अलका याग्निक और आतिफ असलम की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे। उजाला रेडियो का प्रोग्राम है हमारे प्यारे सुनने वालों।

वेल वेल यार, वाह खुदा तुम ही तो हो। और इस तरह से आतिफ असलम एंड अलका याग्निक जी के आवाज में ये खूबसूरत सा गीत आप लोग सुन रहे थे।

सुन वालों, ये उजाला रेडियो है और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम नहमा सुनाने को जा रहे हैं आंस्टांड ज़ादादाग नहीं नित्वेन्द्र एंड ज़ोंडग डेर्टग अगस्त को जबरदस्त हंगामेदार फेस्टिवल होने वाला है ब्राज़ा फेस्ट इंडोर समर एडिशन इंडोर हाँ तू मौसी सुन है भीतर जिया इवेंट सेंटर दनाक में आप सुनने को जा रहे हैं नहमा इस बार प्रोग्राम में ला रहे हैं आफिशा की आवाज में ओ कमवेज़ और ब्राज़ा फेस्ट

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

रमी है पैदाइश के साथ मौत उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। हाउटन से समस्त परिवार महादेव भी सिर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हफ्ता बीफे को 72 साल के आयु में त्वेन सीफन तखियार और पत्नी एल्फी का पति लड़कन किशन विकाश अमरेश और करिश्मा के पिता मीरांदा लिंसे शकीता और राम के ससुर जायदा जनाइरो रोशन और नीलन के आजा हाउटन का रहने वाला श्रीमान चंद्रदत्त महादेव मिसीर की मृत्यु निवखेन के सेंट अंतोनियो सिकन हाउस में हो गई है। हाउटन से समस्त परिवार महादेव मिसीर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हफ्ता बीफे को 72 साल की आयु में ट्वेन जीवन तखियार और पत्नी एल्फी का पति लड़कन किशन विकाश अमरेश और करिश्मा के पिता मीरांदा लिंसे शकीता और राम के ससुर जायदा जन्नायरो रोशन और नीलन के आजा हाउटन का रहने वाला श्रीमान महादेव मिसीर श्रीमान चंद्रदत्त महादेव मिसीर के मृत्यु हो गई है निवखेन के सेंट अंतोनियोस जिकन हाउस में। अर्थी के दाह क्रिया कल शुक्रवार के दिन में 4 बजे मोरखन फ्रेडाख और फिर उर किए जाएंगे। क्रीमेटोरियम डालवेक फ्लोरिडा ड्राइव नंबर 7 उत्तरेख्त ओवरफेक्ट में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतवार्थ फुरजोरखिंग समस्त परिवार महादेव मिसीर के दुख में शामिल है।

और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। अलमीर से लड़कन प्यारे बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 91 साल की आयु में इन नेहंतक यार औत लड़कन इंग्रिड जेन बेटा और केत प्यारे की माँ सभी लड़कन के आजी नानी पर आजी और पर नानी अम्स्टरडम ज़ुइटोस्ट एफियन हेनरियटे रोलांड होल्स्टहाउस में विधवा जगदेव प्यारे रामदीन की मृत्यु हो गई है। अलमीर से लड़कन प्यारे बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 91 साल की आयु में इन निहंतक यार औत लड़कन इंग्रिड जेन बेटा और केत प्यारे की माँ सभी लड़कन के आजी नानी पर आजी और पर नानी अम्स्टरडम ज़ुइटोस्ट कोर्टफोर्ट एफियन हेनरियटे रोलांड होल्स्टहाउस की रहने वाली विधवा जगदेव प्यारे रामदीन की मृत्यु हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया कल शुक्रवार के दिन में 2:30 बजे मोरखन फ्रेडाख हालफद्री किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवैक 275 ओक मेरवैक 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-13-76-31-08 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार प्यारे के दुख में शामिल है।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। अम्स्टर्डम से सभी लड़कन बंसी बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए इतवार के सुबह 85 साल की आयु में फैफन तख्त यार औत स्वर्गीय श्री हरिदेव बंसी के विधवा लड़कन सीता शिवराज, स्वर्गीय उर्मिला देवी मोहाबू, इंदिरा कुसल, मीना शक्कौरी, स्वर्गीय अशोक बंसी और श्रीमान सुनील बंसी के मां, दो पतो दो दामाद और दो स्वर्गीय दामाद के सास, 14 लड़कन और एक स्वर्गीय लड़का के नानी और आजी और 15 लड़कन के परनानी और पर आजी। अम्स्टर्डम जोइटोस की रहने वाली विधवा जयवंती बंसी रामफल की मृत्यु हो गई है। अम्स्टर्डम जोइटोस में पहले पारामारिबो मुंदरवेह के निवासी जो थी। अम्स्टर्डम से लड़कन बंसी बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए इतवार के सुबह 85 साल की आयु में फैफन तख्त यार औत स्वर्गीय श्री हरिदेव बंसी की विधवा लड़कन सीता शिवराज, स्वर्गीय उर्मिला देवी मोहाबू, इंदिरा कुशल, मीना शक्कौरी, स्वर्गीय अशोक बंसी और श्रीमान सुनील बंसी के मां, दो पतो दो दामाद और दो स्वर्गीय दामाद के सास, 14 लड़कन और एक स्वर्गीय लड़का के नानी और आजी और 15 लड़कन के परनानी और पर आजी। अम्स्टर्डम जोई तो उसकी रहने वाली विधवा जयवंती बंसी रामफल की मृत्यु अम्स्टर्डम जोइटोस में हो गई है। पहले पारामारिबो मुंदरवेह की निवासी थी। अर्थी से विदाई लेने की मौका आज बीफे के रात में 7 बजे से 8 बजे तक एडफर्ड सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेह 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में और अर्थी के दाह क्रिया कल शुक्रवार के दिन में 12 बजे मोर्खन फ्रेडक 12 किए जाएंगे वेस्खार्ड क्रेमाटोरियम ओक मेरवेह 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में।

और मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टर्डम वेस्ट से प्रकाश बंसी और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते इतवार के सुबह 85 साल की आयु में फैफन तख्तख यार औत प्रकाश बंसी की काकी शुरली बंसी की ककिया सास विकास मनोरमा और प्रिया बंसी के आजी अम्स्टर्डम जोइटोस की रहने वाली विधवा जयवंती बंसी रामफल की मृत्यु हो गई है। अम्स्टर्डम जोइटोस में पहले पारामारिबो मिंदरवेख के निवासी थी। अम्स्टर्डम वेस्ट से परिवार प्रकाश बंसी बहुत दुख के साथ सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए इतवार के सुबह 85 साल की आयु में फैफन तख्त यार औत श्रीमान प्रकाश बंसी की काकी श्रीमती शुरली बंसी की ककिया सास विकास मनोरमा और प्रिया बंसी के आजी अम्स्टर्डम जोइटोस की रहने वाली विधवा जयवंती बंसी रामफल की मृत्यु अम्स्टर्डम जोइटोस में हो गई है। पहले पारामारिबो मिंदरवेक के निवासी जो थी अर्थी से विदाई लेने की मौका है आज बीफे के रात में 7 बजे से 8 बजे तक ऐतफर्ट सेंट्रम वेस्ट खार्दे के मुर्दालय ओक मेरवेक 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में अर्थी के दाह क्रिया कल शुक्रवार के दिन में 12 बजे मोरखन फ्रेडाग 12 किए जाएंगे। वेस्ट खार्दे क्रिमेटोरियम ओक मेरवेक 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। और सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्ट फुरजोरखिंग समस्त परिवार बंसी और परिवार रामफल के दुख में शामिल है।

0: शेष हुआ।
1: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। अम्स्टर्डम से परिवार भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 87 साल के आयु में ज़ेफ़रन तख्तख यार और पत्नी श्रीमती बेत्सी भोला का पति लड़कन एरविन सुदेश मीला और सुचित्र के पिता रोशिला नॉर्मा स्टेफन और केनेट के ससुर, सात लड़कन के नाना और आजा और चार लड़कन के परनाना और पर आजा अम्स्टर्डम ज़ुइटोस वोन ग्रुप आनंद ज्योति का रहने वाला श्रीमान अंद्रे भोला के मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। पारामारिबो में कॉर्नेलिया स्ट्रैट का रहने वाला था। अम्स्टर्डम से परिवार लड़कन भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 87 साल की आयु में ज़ेफ़रन तख्तख यार और पत्नी श्रीमती बेत्सी भोला का पति लड़कन एरविन सुदेश मीला और सुचित्रा के पिता रोशिला नॉर्मा स्टेफन और केनेट के ससुर, सात लड़कन के नाना और आजा और चार लड़कन के परनाना और पर आजा अम्स्टर्डम ज़ुइटोस वोन ग्रुप आनंद ज्योति का रहने वाला श्रीमान अंद्रे भोला के मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। पहले पारामारिबो कॉर्नेलिया स्ट्रैट का रहने वाला था। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आने वाले शुक्रवार के रात में 7:15 से 7:15 तक। फ्रेडा खाफन फन क्वर्ट ओवर ज़ेफ़न तोट क्वर्ट ओवर आठ वेंसगार्डे क्रिमेटोरियम ओक मेरवेक 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में। और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शनिचर के दिन में 1 से जातर दखास्तांद 1 किए जाएंगे वेंसगार्डे क्रिमेटोरियम ओक मेरवेक 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार भोला के दुख में शामिल है।

और उजाला रेडियो पर यहीं से आप सुनेंगे शोक प्रोग्राम यादें। मुकेश जी की आवाज में गीत पेश है हौतन से परिवार महादेव मिसीर, पत्नी एल्फी की तरफ से स्वर्गीय पति की याद में लड़कन किशन, विकास, अमरेश और करिश्मा, महादेव मिसीर की तरफ से स्वर्गीय पिता मिरांडा, लिंसे, शकिता और राम की तरफ से स्वर्गीय ससुर जायदा, जनायरो रोशन और नीलन की तरफ से स्वर्गीय प्यारा आजा, स्वर्गीय श्री चंद्रदत्त महादेव मिसीर की याद में 72 साल के आयु में 72 तखियार और इनकर मृत्यु जो हो गई है निवखेन के सेंट आंतोनियस हॉस्पिटल में हौटन का रहने वाला था, तो इन्हीं की याद में ये गीत पेश है।

आप जो सुने तो शोक प्रोग्राम में पेश की गई हाउटन के रहने वाले पत्नी एल्फी की तरफ से प्यारा स्वर्गीय पति लड़कन किशन, विकास, अमरेश और करिश्मा, महादेव मिसीर की तरफ से स्वर्गीय पिता मिरांडा, लिंसे, शकीता और राम की तरफ से स्वर्गीय ससुर जायदा, जनायरो रोशन और नीलन की तरफ से स्वर्गीय आजा। स्वर्गीय श्री चंद्रदत्त महादेव मिसीर की याद में 72 साल की आयु में इनकर मृत्यु बीते हुए हफ्ता बीफे को हो गई है। हाउटन का रहने वाला था, तो इन्हीं की याद में गीत पेश की गई है उजाला रेडियो पर।

शोक प्रोग्राम जारी करते हुए सुनने वालों, एक और गीत आप सुनेंगे और ये गीत पेश है समस्त परिवार बंसी की तरफ से, अपने प्यारी स्वर्गीय माँ, सास, नानी, आजी, पर नानी और पर आजी, स्वर्गीय विधवा जयवंती बंसी रामफल की याद में। इनकर मृत्यु बीते हुए इतवार के सुबह 85 साल की आयु में, जो आम्स्टर्डम ज़ुइटोस्ट में हो गई है, तो इन्हीं की याद में गीत प्रोग्राम में पेश है।

याद आती है हरिहरन की आवाज में। गीत आप सुने जो कि पेश की गई है समस्त परिवार बंसी की तरफ से अपने प्यारी स्वर्गीय मां, सास, नानी, आजी, परनानी और पराजी, स्वर्गीय विधवा जयवंती बंसी रामफल की याद में। इनकर मृत्यु 85 साल की आयु में बीते हुए इतवार के सुबह अम्स्टरडम जोयतोस्ट में हो गई है। तो इस शोक प्रोग्राम में अगला गीत जो आप सुनेंगे ये पेश है सभी लड़कन सीता, इंद्रा, मीना और सुनील बंसी के तरफ से अपने बहुत ही प्यारी माँ के याद में और दो पतों के तरफ से अपने प्यारी सासू माँ की याद में पेश है।

तू इतनी दूर क्यों है माँ। फिल्म अनोखा बंधन का गीत आप सुने और पेश की गई ये लड़कन सीता, इंदिरा, मीना और सुनील बंसी की तरफ से अपनी प्यारी स्वर्गीय माँ, दो पतों की तरफ से स्वर्गीय सास, स्वर्गीय विधवा जयवंती बंसी रामफल की याद में। अगला गीत भी जो आप सुनेंगे तो ये भी पेश है लड़कन इंदिरा, कहिए सीता, हाँ सीता, इंदिरा, मीना और सुनील बंसी की तरफ से प्यारी स्वर्गीय माँ, दो पतों की तरफ से स्वर्गीय सासू माँ, विधवा जयवंती बंसी रामफल की याद में 85 साल की आयु में फैफन तख्तियार औत इनकर मृत्यु हो गई है अम्स्टरडम ज़ुइटोस्ट में। तो अगला गीत भी सुनिए, पेश है

और लता जी की आवाज में गीत को आप जो सुने। पेश की गई लड़कन बंसी, सीता, इंदिरा, मीना और सुनील बंसी की तरफ से अपनी प्यारी स्वर्गीय माँ और दो पतों की तरफ से स्वर्गीय सासू जी स्वर्गीय विधवा जयवंती बंसी रामफल की याद में 85 साल की आयु में बीते इतवार के सुबह मृत्यु इनकर हो गई है अम्स्टरडम जयतोष में। तो इन्हीं की याद में गीत पेश की गई है। शोक प्रोग्राम यादें है ये उजाला रेडियो पर और इसमें एक आखिरी गीत होंगे और ये गीत पेश है समस्त परिवार बंसी की तरफ से अपने प्यारी स्वर्गीय माँ, सास, नानी, आजी, परनानी और पर आजी स्वर्गीय विधवा जयवंती बंसी रामफल की याद में मृत्यु हो गई है बीते इतवार की सुबह। तो इन्हीं की याद में ये गीत प्रोग्राम में पेश है

उड़ गई है माला और मोती बिखड़ चले। प्रदीप की आवाज में गीत आप सुने और पेश की गई समस्त परिवार बंसी के तरफ से अपने प्यारी स्वर्गीय माँ, सास, नानी, आजी, पर नानी और पर आजी स्वर्गीय विधवा जयवंती बंसी रामफल की याद में 85 साल की आयु में बीते इतवार के सुबह अम्स्टर्डम ज़ुइटोस में इनकर मृत्यु हो गई है। तो समस्त परिवार की तरफ से इन्हीं की याद में गीत पेश की गई है। उजाला रेडियो पर आप सोख प्रोग्राम को सुने। उजाला रेडियो के साथ साथ आखिरी सफर और फुरजोरखिंग इस परिवार के दुख में भी शामिल है। और यहीं तक आप सुने आज का सोख प्रोग्राम यादें।

0: Jungle Radio, de grootste van Nederland.
1: You are the band that you are.
0: You are.
2: तू जाने है, तो उजाला रेडियो पर सुनिए यादगार गीत।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न।

उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

Brands FM में अगर आप आएंगे पूरा परिवार के साथ आएंगे तो बच्चों के वास्ते फॉर किंडरगार्टन टू 8 मीटर ग्रेटस आप अंदर जा सकते हैं। आ रहे हैं आपके लिए द बैंड का गायक स्टीवन केदार।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

के साथ गमी है पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। हाउटन से समस्त परिवार महादेव भी सिर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हफ्ता बीफे को 72 साल के आयु में त्वेन सीफन तखियार और पत्नी एल्फी का पति लड़कन किशन विकाश अमरेश और करिश्मा के पिता मीरांदा लिंसे शकीता और राम के ससुर जायदा जनाइरो रोशन और नीलन के आजा होटन का रहने वाला श्रीमान चंद्रदत्त महादेव मिसीर की मृत्यु निवखेन के सेंट अंतोनियो सिकन हाउस में हो गई है। होटन से समस्त परिवार महादेव मिसीर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हफ्ता बीफे को 72 साल की आयु में ट्वेन जीवन तखियार और पत्नी एल्फी का पति लड़कन किशन विकाश अमरेश और करिश्मा के पिता मीरांदा लिंसे शकीता और राम के ससुर जायदा जन्नाइरो रोशन और नीलन के आजा होल्टन का रहने वाला श्रीमान महादेव मिसीर श्रीमान चंद्रदत्त महादेव मिसीर की मृत्यु हो गई है निवखेन के सेंट अंतोनियोस जिकन हाउस में। अर्थी के दाह क्रिया कल शुक्रवार के दिन में 4 बजे मॉर्गन फ्रेडाग ओम 4 यूर किए जाएंगे क्रीमेटोरियम डालवेक फ्लोरिडा ड्राइव नंबर 7 यूट्रेख्ट ओवरवेख्ट में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतवार फुरजोरखिंग समस्त परिवार महादेव मिसीर के दुख में शामिल है।

और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। अलमीर से लड़कन प्यारे बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 91 साल की आयु में इन नेहंतक यार औत लड़कन इंग्रिड जेन बेटा और केत प्यारे की माँ सभी लड़कन के आजी नानी पर आजी और पर नानी अम्स्टरडम ज़ुइटोस्ट एफियन हेनरियटे रोलांड होल्स्टहाउस में विधवा जगदेव प्यारे रामदीन की मृत्यु हो गई है। अलमेर से लड़कन प्यारे बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 91 साल की आयु में इन नेहंतक यार औत लड़कन इंग्रिड जेन बेटा और केत प्यारे की माँ सभी लड़कन के आजी नानी पर आजी और पर नानी अम्स्टरडम ज़ुइटोस्ट कोर्टफोर्ट एफियन हेनरियटे रोलांड होल्स्टहाउस की रहने वाली विधवा जगदेव प्यारे रामदीन की मृत्यु हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया कल शुक्रवार के दिन में 2:30 बजे मोरखन फ्रेडाख हालफद्री किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवैख 275 ओक मेरवैख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-13-76-31-08 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार प्यारे के दुख में शामिल है।

और उजाला रेडियो पर यहीं से आप सुनेंगे शोक प्रोग्राम यादें। मुकेश जी की आवाज में गीत पेश है हौतन से परिवार महादेव मिसीर, पत्नी एल्फी की तरफ से स्वर्गीय पति की याद में लड़कन किशन, विकास, अमरेश और करिश्मा, महादेव मिसीर की तरफ से स्वर्गीय पिता मिरांडा, लिंसे, शकिता और राम की तरफ से स्वर्गीय ससुर जायदा, जनायरो रोशन और नीलन की तरफ से स्वर्गीय प्यारा आजा, स्वर्गीय श्री चंद्रदत्त महादेव मिसीर की याद में 72 साल की आयु में त्वेयन जीवन तखियार और इनकर मृत्यु जो हो गई है निवखेन के सेंट आंतोनियस हॉस्पिटल में हौतन का रहने वाला था, तो इन्हीं की याद में ये गीत पेश है।

आप जो सुने तो शोक प्रोग्राम में पेश की गई हाउटन के रहने वाले पत्नी एल्फी की तरफ से प्यारा स्वर्गीय पति लड़कन किशन, विकास, अमरेश और करिश्मा, महादेव मिसीर की तरफ से स्वर्गीय पिता मीरांदा, ग्लिन से शकीता और राम की तरफ से स्वर्गीय ससुर जायदा, जनायरो रोशन और नीलन की तरफ से स्वर्गीय आजा। स्वर्गीय श्री चंद्रदत्त महादेव मिसीर की याद में 72 साल की आयु में इनका मृत्यु बीते हुए हफ्ता बीफे को हो गई है। हाउटन का रहने वाला था, तो इन्हीं की याद में गीत पेश की गई है उजाला रेडियो पर।

खूबसूरत गाना आपके लिए पेश है, मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। यानी ये लगा पंजाबी हिंदी फ्यूजन गाना। You heard them here by the one and only दुनिया का मशहूर हिंदुस्तानी हिट रेडियो और नाम है उजाला रेडियो। मैं हूँ अमित जयराम, जहाँ भी हो आप वाच योगा ना दूं बेंतिक सौ से खनीत लेकर फंदे से हेलके दाग और खनीत फंदे हेलके गाना, एक से एक मोई मोई गाना और खूबसूरत गाना स्पेशल आप सभी के लिए। फिल्म का नाम है मर जवा और गाना का नाम है तुम ही आना।

आठ बजकर 10 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो है ये और मैं देखता हूं तो आज का ये दिन जो है बरसात वाला और बरसात के साथ साथ काफी धूप भी थी, हवा, तो इस खूबसूरत दिन जिसमें सब कुछ थे, आप सभी का हम स्वागत करते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों लाइव एंड आरएक्यूआर के स्टूडियो रतनाम से। यहां से रात्रि में 11 बजे पेश करेंगे प्रोग्राम दिल की आवाज और उजाला रेडियो के स्टूडियो रतनाम से आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदरपूर्वक है, तहे दिल से आप सभी का हम स्वागत करते हैं। उम्मीद और आशा करते हैं कि आज आपका दिन जो है बहुत ही खूबसूरत गुजरे हैं। अब कुछ घंटे जो बचे हैं इस रात्रि का, इस दिन का, आपका और मेरा साथ रहेंगे और निराश नहीं करेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों दिल की आवाज में। आज के सिलेक्शन में बहुत सारे खूबसूरत नगमाए हैं, कुछ जाने पहचाने और कुछ छुपे हुए अनमोल हीरे भी साथ लेकर आए हैं। सभी निकालकर सेवा में पेश करने वाला हूं हमारी ये प्रोग्राम के दौरान। मेरे प्यारे सुनने वालों, अगर आप व्हाट्सएप से बातें भी करना चाहोगे तो स्टूडियो उजाला रेडियो का सीधे आपका व्हाट्सएप आएंगे अगर आप ऐप करेंगे अपनोल तुंदख दरीसेस्त्री नोलाख नोलाख। और रहे आपके कार्रवाई के लिए जैसे कि आपकी फरमाइशी, जरूरी खबरें, मौत की खबरें, किसी भी प्रकार का जानकारी और इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करना चाहोगे तो आप दफ्तर को, दफ्तर के दिन, दफ्तर के वक्त, दफ्तर के तार पर आप अवश्य तार करें। सोमवार से शनिवार फमान रख तो मित्र 7 सुबह में 10 शाम में 3 तक फनफ्स मॉर्गन 3 तो 3 3 020-409-0807 020-409-0807 020-409-0807। और वैसे तो भी लगातार किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी पल, चाहे दफ्तर बंद है या नहीं, चाहे आप वैकेंसी से है या नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप हो तो ईमेल के जरिए आप भी अपना कामकाज निभा सकते हैं। जरूरी खबरें, फरमाइशें, je moet niet denken van ik kom terug naar Nederland, dan ga ik het regelen. Je kan het ook daar, vanuit daar regelen. Doe je net toch. info@ujala.nl info@ujala.nl Dil ki awaaz mein mere pyare sunwalo romantic songs ke saath saath dard bhare nagmaye pesh hum karte hain hamesha. Aur aaj ka opening selection हमारे प्रिय हसीनों के पुजारी किशोर कुमार जी की आवाज कि कभी पलकों पे आंसू है तो कभी लब पे शिकायत है, मगर ए जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। अगर आप स्वीकार करें मेरे प्यारे सुनने वालों की हमारी जिंदगी में दुख भी है और सुख भी है, उसे अपना लीजिएगा कि ऐसे ही है और इस तरह से जिंदगी भी हमें बिताना चाहिए। अगर वो अपने आप आपने स्वीकार किए हैं तो जिंदगी जीना और भी आसान हो जाएंगे। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों जो मिलकर लिखा है द ग्रेट नीरा फासली जी और विठल भाई पटेल, हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज आज का ओपनिंग सिलेक्शन। एंजॉय मेरे प्यारे सुनने वालों, शुभ रात्रि।
और एंजॉय यू आर, एंजॉय दिल की आवाज, एंजॉय ये खूबसूरत नगमा।

जो आता है वो जाता है, ये दुनिया आनी जानी है, यहाँ हर शय मुसाफिर है, आप भी हम भी सभी मुसाफिर है, और सफर में जिंदगानी है। उजालों की जरूरत है, अंधेरा तुम मेरी किस्मत है ना। उजालों की जरूरत है लेकिन अंधेरा मेरी किस्मत है। कभी पलकों पे आंसू है तो कभी लब पे शिकायत है, मगर है जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे ही मोहब्बत है। निधा फासली जी और विठल भाई पाटिल जी का मिलन खूबसूरत गीत लिखा गया है, जिंदगी की एक हकीकत लिखा गया है, और गीत खूबसूरत जो लिखा गया अपनी खूबसूरत आवाज में गाए हैं हसीनों के पुजारी किशोर कुमार। आज का ओपनिंग सिलेक्शन फ्रॉम द मूवी हर जाई। फेवरेट स्टेशन है आप सभी का उजाला रेडियो। मैं हूं रतन राम दुलाडे पांडे, मेरे प्यारे सुनने वालों, और फिर एक बार तहदिल से स्वागत है आप सभी का। एंजॉय दिल की आवाज। काम पर हो तो दिल लगाकर काम करना, और अगर घर पर हो, कुछ खा रहे हो, मजा ले रहे हो, तो जिस तरह से भी आप एंजॉय कर रहे हैं घर पर, स्वादिष्ट भोजन हो और आप भरपूर मजा लें। मैं बैठ मेरे प्यारे से नौ लोग किसी भी प्रकार या पैदल या फिट्स या मोटर कार में या ऑफिस से आप हिस्सा ले रहे हैं, तो संभाल के एंड लाइफ का फोकस तू जाने दो। विदेश गए हो तो एंजॉय योर वेकेशन, और बेहद खुशी है हम कि आप ही दूर जाते हैं लेकिन उजाला रेडियो को साथ लिए जाते हैं, तो दिल से धन्यवाद। और जो लोग हमारे इस देश में आए हैं, चुन किए हुए हैं, तो स्वागत है आप सभी का। एंजॉय हॉलैंड एंड एंजॉय यू आर एंजॉय द ब्यूटिफुल सॉन्ग्स एंड एंजॉय दिल की आवाज। The name that spells magic, Udit Narayan और अलका याग्निक, समीर का लिखा हुआ गीत दोनों मिलकर गाएंगे। वो तस्वुर का आलम, What a romantic song, मेरे प्यारे सुनने वालों, enjoy।

वो तेरा शर्माना, वो नजर का झुकाना, जाते जाते तेरे वो अचानक मुड़ाना, हमको बड़ा ही करे बेकरार, वो प्यार है प्यार है प्यार, वो मेरे बिन बोले तेरा समझ लेना, और वो इशारों से ही बात सब कह देना, हमको बड़ा कर देता है बेकरार, तो समझो ये प्यार है प्यार है प्यार, वो तसव्वुर का आलम और वो दिले आशिकी। खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनो वालों, द ग्रेट समीर रंजन जी ने गीत को लिखा, द नेम दैट स्पेल्स मैजिक, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, फिल्म का नाम ऐतराज। और इस गीत के बाद मेरे प्यारे सुनो वालों, समीर का एक और लिखा हुआ रोमांटिक सॉन्ग, एंड दिस इज कुणाल गांजा वाला, कि दिल कह रहा है तुझसे यूं रिश्ता, चलो मैं छोड़ दूं और तेरी कदमों को इस तरह से चूम लूं, तेरी जिस्म को मैं ओढ़ लूं, पागल दीवाना कर देंगे अगर इस गीत को आप समझेंगे, और कुणाल गांजा वाला की खूबसूरत आवाज़।

दिल कह रहा है तुमसे यूं रिश्ता मैं जोड़ लूं और तेरी धड़कनों को चूम लूं और तेरा जिस्म को ओढ़ लूं, आंखों में तेरी है मेरी ही चेहरा, चाहे तू ये माने या ना माने, बेचैनी को चैन तूने दिया है, बिन तेरे मुश्किल है रहना पाना। तेरी लबों से प्यार की कलियां तोड़ लूं और तेरी धड़कनों को छू लूं, तेरी जिस्म को ओढ़ लूं, ये मेरा दिल कह रहा है। प्यार भरे अल्फाज है मेरे प्यारे सुनने वालों, समीर अनजान जी का लिखा हुआ और आवाज का जादू कुणाल या कुणाल गांजा वाला, फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनने वालों क्योंकि। घड़ी की तरफ मैं देखूं तो 6 मिनट गुजर चुके हैं और वो भी सरे 8 बजकर। हमारे सबसे प्रिय सॉन्ग राइटर कवि शायर जो है वो है सहेल लुधियानवी जी और इनका लिखा हुआ एक रोमांटिक सॉन्ग सुरों का बादशाह द मेलोडी किंग रफी साहब जी और मेलोडी क्वीन संगीत की देवी लता जी की आवाजें। ये खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग को पेश करने जा रहा हूं हियर ऑन यू आर दिल की आवाज में ये नगमा।

यह ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे जन वालों, सांसों में तेरी ये खुशबू के डेरे और खुशबू के डेरों में मस्ती के घेरों में हम तो बस खोए जाते हैं। ये खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग हमारे प्रिय श्री सहेल लुधियानवी जी ने लिखा है और कम रोमांटिक तो नहीं था, बहुत रोमांटिक था। लता जी मेरे प्यारे सुन वालों, संगीत की देवी लता जी की आवाज और सुरों का बादशाह द लेजेंड पटना श्री मोहम्मद रफी साहब जी, ये दोनों ने मिलकर गीत गाए हैं और फिल्म का नाम, मूवी का नाम काला पत्थर। मेरे प्यारे सुन वालों, मैं देखता हूं कि काफी लोग मजा ले रहे हैं प्रोग्राम के साथ। क्या आप एंजॉय कर रहे हैं? 020-363-0008 यूआर के स्टूडियो का जो व्हाट्सएप है वहां पर भी बातें बहुत होते हैं, आप भी बातें करना चाहूंगी तो सुदलीचे दूर तो ये मुमकिन है। एपोन खरुस्ना स्टूडियो 020-363-0008 और यह दफ्तर की कार्रवाई मेरे प्यारे सुनो वालों, डन मुझे मेट कॉन्टैक्ट और फिर कॉन्टैक्ट अपने मेट कंटोर फिया 020-409-0807 और मेलन नार info@ujala.nl नार स्टूडियो दफ्तर के साक जो है लीवर नीत एप वांट वै उम्रुपर्स कुन उदार नी में हेल्प तू जाने तो। The name that spells magic, Udit Narayan. और the great Javed Akhtar जी का लिखा हुआ नगमा उदित जी गाकर सुनाएंगे कि जानम देख लो मिट गई ये दूरियां, तो मैं यहां हूं, यहां हूं, यहां हूं और यहां, कैसी सरहदे कैसी ये मजबूरियां, मैं यहां हूं, यहां हूं, यहां हूं, यहां। ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुन वालों, इत्मीनान से आप इसे सुने, एंजॉय करें, यू विल लव इट।

ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुन लो, तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, और तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ। जन्म देख लो मिट गई दुनिया, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ और यहाँ। जावेद अख्तर जी का लिखा हुआ एक एक खूबसूरत प्यार भरा अल्फाज मेरे प्यारे सुनो, डनीम द स्पेल्स मैजिक उदित नारायण की आवाज, और ये था फिल्म वीर जरा का एक नगमा। वीर जरा ब्यूटीफुल मूवी। और अब की बार मेरे प्यारे सुनो लो, जबकि रोमांटिक सॉन्ग हो रहे हैं तो चलो एक और सही। अब की बार सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजें, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग के जो लिस्ट है उसमें ये गीत भी शामिल है। पता नहीं क्यों ये गीत मुझे इतनी खूबसूरत लगते हैं, आई डोंट नो व्हाई। समीर ने लिखा और सोनू जी और अलका जी मिलकर गीत गाएंगे, तो पेश करता हूं हियर ऑन यू आर दिल की आवाज में।

मोहब्बत ही मोहब्बत है और वो भी मेरी रूबरू, तमन्ना में निगाहों में है बस तू ही तू। न सुबहों का खबर है ना शाम का पता मेरे सनम, ख्यालों में ही छाया हुआ तुम्हारा नशा, दीवानगी है इस कदर मुझको नहीं अपनी खबर, क्योंकि ऐसा दीवाना हुआ मेरा ये दिल आपके प्यार में। समीर का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, सुनूंगी गमोड़ का याग्निक जी की आवाजें, दिल मांगे मोर फिल्म का नाम। इस घंटे का आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूं मेरे प्यारे सुनने वालों, और गीत द ग्रेट मजरू सुल्तानपुरी जी, इनके हाथों से लिखा हुआ ये खूबसूरत गीत है। मजरू जी महान शायर है, सॉन्ग राइटर है, कवि है, इनके हाथों से लिखा हुआ कितने सारे गाने आप पसंद करते हैं और ये भी जरूर और यकीनन पसंद भी करेंगे। इस गीत के बाद ब्रेक मेरे प्यारे सुनने वालों, ब्रेक के उस पार मिलते हैं ये रविवार, जबकि हम पेश करेंगे दिल की आवाज का दूसरा हिस्सा, संगीत की देवी लता जी।

पूरा तोड़ दिन के देवे है तोड़ साथ, के तोड़ साथ सोते है, के तोड़ साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा

दिल में तुम्हारे छुपा दी है मैंने तो अपनी ये जान, अब तुम ही इसको संभालो, हमें अपना होश कहाँ, बेखुदी ये दो पल की और जिंदगी दो पल की, इंतजार कब तलक हम करेंगे भला, और तुम्हें प्यार कब तलक ना करेंगे भला, एक छोटा सा वादा इस उम्र से भी ज्यादा सच्चा है सनम, कि हर मोड़ पर साथ इसलिए रहते हैं अप है हम दोनों, तो ये दोस्ती दो पल की और जिंदगी दो पल की, इंतजार कब तलक हम करेंगे भला, तुम्हें प्यार कब तक ना करेंगे भला। बहुत ही खूबसूरत अल्फाजें प्यार भरा ये खूबसूरत बयान नजीर फरासी का लिखा हुआ, और जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में गए हैं जहां वापसी नामुमकिन है। द ग्रेट कृष्ण कुमार कुनाट ऑफ द वेल के की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों। आई वॉज मोर 53 यार सो बहना 54 वर्ड 2022 में, और वो भी इन अंडेर तक में इन्होंने दम तोड़ दिया है, वो भी स्टेज पर। Marcin Mujlić zijn nog met ons. En ik wil bedanken mijn bhaiya Rob Bikram en Sandra bhi jo tune kiye hue hain. Van drie liedje van KK. Rob, dankjewel. Was ik niet van plan. Playlist mein zarur in iska geet tha aur hai. चार पांच नगमाए आज के प्लेलिस्ट में है के जी का, माइक वास नी फॉर्म प्लान ओम तदराए, लेकिन चलाया तो बहुत मजा आया। थैंक यू रोब विक्रम और संद्रा जी, एंजॉय योर इवनिंग, एंजॉय यू आर, एंजॉय दिल की आवाज। मेरे प्यारे सुनो लो, इस प्रोग्राम में दिल की आवाज में हम आपको ले चलेंगे एक बहुत ही प्यार भरा नगमा की ओर। लोग जवान होते हैं और बड़े होते हैं तो ये सपने भी देखते हैं कि कभी अपना घर होंगे, ये खूबसूरत प्यार भरे जीवन साथी भी रहेंगे, घर के साथ साथ बाग बगीचे भी रहेंगे, काम पर जाएंगे वो मेरा इंतजार करेंगे, खाना बनाएंगे वापसी पर हम आएंगे, प्यार करेंगे एक दूसरे को, मिलकर खाना भोजन हम खाएंगे, और शायद आगे चलकर, शायद नहीं प्लाचे में है कि एक दो बच्चे भी आएंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, उन्हें छोड़ने जाएंगे, तो फिर वापस मैं काम पर जाऊंगा। प्रख्त है मोई फ्लो, इस तरह का एक नगमा द ग्रेट आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ। मेरे प्यारे सुन वालों, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ नगमाए बहुत सारे अमर है। हम इतने पसंद करते हैं इनके लिखे हुए नगमाए। आनंद बख्शी जी, इनके बारे में जो भी आप कहेंगे कम कहेंगे, इतनी महान है ये। संगीत की देवी लता जी और अमित कुमार की आवाजें पेश करता हूं नगमा, ही दिल की आवाज में।

तेरा मेरा नाम देखो लिखा है, रास्ता नहीं ये आम लिखा है, और ये है दरवाजा जहां पर तू खड़ी है, तो बस अंदर आ जाओ क्योंकि सर्दी बड़ी है। अच्छा ये बताओ कहां पे है पानी, देखो बाहर बह रहा है ये झरना दीवानी, बिजली नहीं है यही एक गम है, लेकिन पगली तेरी बिंदिया कोई बिजली से कम क्या है। देखो छोड़ो मत छेड़ो, जरा तुम बाजार जाओ, अरे भैया जाता हूं लेकिन पहले यहां आओ क्योंकि शाम जवां है। और तू कहां है? बहुत प्यार भरा नगमा मेरे प्यारे सुनने वालों, आनंद बख्शी जी कमाल का गीत इन्होंने लिखा है, इतनी प्यार और उतनी ही प्यार के साथ संगीत की देवी लता जी ने गाए हैं, और अमित कुमार अपनी खूबसूरत आवाज में। लव स्टोरी फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनने वालों। इस गीत के बाद जरा पहले मैं घड़ी को एक नजर रखूं कि क्या वक्त है। या अतिस अतिस बहना बहना बहना सेफ मिनट फोर हाल्फ तीन मेरे प्यारे सुनने वालों। सरे 9 बजने में 60 मिनट ऑलमोस्ट बाकी है। सुनिधि चौहान और शान को पेश करता हूं समीर का लिखा हुआ गीत, आई थिंक ऑफ यू 24/7 मेरे प्यारे सुनने वालों। यू नो

24/7 I think of you. समीर का लिखा हुआ गीत मिलकर गीत गाए शान और सुनिधि चौहान, 36 चाइना टाउन फिल्म का नाम। मेरे प्यारे सुनने वालों, एक ऑल टाइम ग्रेट रोमांटिक सॉन्ग अमित खन्ना जी का लिखा हुआ, मैं इसे चलाने जा रहा हूं और यकीनन आप सभी पसंद करेंगे। आइलिन जी एट हार्लेम डंकीवेल आपके ऐप के लिए, और शारदा एतारनेम भी डंकीवेल आपके ऐप के लिए, इल्स रामदयाल एडन हेल्दर डंकीवेल धन्यवाद आपके ऐप के लिए। अम्स्टरडम का सत्या जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। अम्स्टरडम का रिया कल्लू जी आपको भी धन्यवाद हम कहते हैं। धन्यवाद भी हम कहते हैं हेर एंद्रू जी और चित्रा जी एट मार्सब्रुक, और धन्यवाद सुशीला जी, सुशीला चंद्रिका सिंह जी एट अम्सलफेन, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। रोहिणी कल्लू जी एट रोटरडम श्रीडम डंकीवेल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। अम्स्टरडम का सुनील, सुनील भैया डंकीवेल आपके ऐप के लिए, और धन्यवाद भी हम कहेंगे अम्स्टरडम सेंट्रम का प्रभा जी डंकीवेल आपके ऐप के लिए, और ऐप करने के लिए भी हम धन्यवाद डंकीवेल कहेंगे। जेनी मेरे प्यारे सुनवालो, एक खूबसूरत गीत अमित खन्ना का लिखा हुआ, सुलक्षणा पंडित और बप्पी लहरी आप सभी के लिए पेश करता हूं।

उजाला ही उजाला है बादलों से फिराज, और चांद ने मुंह निकाला बिखरी चांदनी के माला। बाहर ही बाहर है महका महका पूरा ये चमन है, किसका इंतजार है मेरा ये दिल तो बेकरार है। और चंचल आज पवन है, मीठी मीठी सी चुभन है, बनके एक लहर मन झूम रहा है। अमित खन्ना जी इनके हाथों से लिखा हुआ ये खूबसूरत गीत, पॉपुलर सॉन्ग, बप्पी लहरी और सुलक्षणा पंडित जी की आवाजें, चलते चलते फिल्म का नाम। मेरे प्यारे सुनो, प्यार चेहरे से होते हैं, आंखों देखे तुम्हें पसंद कर लिया, और वो आंख से सीधे दिल में उतर जाते हैं, वो पहला अंदाज। तो ये चेहरा कहे दिल की बातें, आंखों में कितनी कहानियां, लेकिन फिर भी हमने तो किताबों में अक्सर पढ़ा है कि यही है प्यार की निशानियां। द टाइगर ऑफ बंगाल, कुमार सानू, अलका याग्निक और खूबसूरत अल्फाजे, ये दोनों मिलकर गाएंगे रानी मलिक जी का लिखा हुआ।

हमेशा ये हो जाता है मुझसे, मेरे प्यारे सुनो, माफी चाहता हूँ। लाइव प्रोग्राम है और दान कभी कभी ये क्नॉप वहां यहाँ, इतने सारे बटन है यहाँ, कभी कभी भूले से दबा जाता है और गीत रुक जाते हैं अचानक। मारतवासमारम पार से कौन, उम्मीद और आशा करते हैं कि फिर भी आपने गीत को पसंद की है। और क्या गीत है मेरे प्यारे सुनो वालों, हमको हुई है मोहब्बत सनम, बस हमको तो बस इतना पता है, अब अंजाम अब सोचना क्या, ये अच्छा है या बुरा है। जब से तुम्हारे करीब आ गए, खुद से हुए अजनबी से, तन्हाई हो या हो महफिल, लगता नहीं मेरे दिल कहीं पे, ये चेहरा कहे दिल की बातें और आंखों में कितनी कहानियां, हमने तो किताबों में अक्सर पढ़ा है कि यही है प्यार की निशानियां। खूबसूरत अल्फाज है मेरे प्यारे सुनने वालों, इतनी प्यार भरे शब्द रानी मलिक जी के कलम से लिखा गया है, और द टाइगर कुमार सानू और अलका याग्निक जी की आवाजें। हम है प्रेमी फिल्म का नाम, हम है प्रेमी। अगले गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, एक दर्द भरे गीत सेवा में हीर ऑन यू आर दिल की आवाज में पेश करेंगे, हसन कमल जी का लिखा हुआ, और मिलकर गीत जो गाएंगे मनहर उदास और नाइनटिंगेल आशा जी की, ढूंढती है तुझे मेरी तन्हाइयां।

तेरी चाहत, तेरी चाहत में चाहे थी तुमने वफा, रोटिए याद आई जो दिल की खता। कैसा मौसम है ये, फूल खिलते नहीं, सखम सिलते नहीं और यार मिलते नहीं। हम ये समझे थे कि रोज कि कुछ रोज में तुझको भूल जाएंगे, पर भूलती सनम ढूंढती है तुझे मेरी तन्हाइयां, ऐ मेरी जिंदगी खो गई तुम कहां। ये दर्द भरे गीत मेरे प्यारे सुनालो हसन कमल जी का लिखा हुआ है और मिलकर गीत गाए हैं नाइटिंगेल आशा जी और मनहर उदास। मेरा धर्म फिल्म का नाम। घड़ी को मैं देखता हूं तो मेरे प्यारे सुनालो वक्त कुछ ऐसा है कि एक आखिरी गीत इस घंटे का मैं आप तक पेश करूं, उसके बाद 10 बजे की ब्रेक होंगे, इश्तिहारे आप सुनेंगे और इश्तिहारों के बाद सेवा में लेकर हम प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, दिल की आवाज का आखिरी हिस्सा आप तक हम पेश करेंगे। और उस आखिरी हिस्से में कुछ द 80s, 70s, 60s और यानी कि हम 90s में जाएंगे नहीं। वखान खून लेकर सक फनाफ द 80 यार, दे यार 80 न दे यार 70 en naar de jaren 60 en misschien nog ouder. Aau mil jaye hum suganda aur suman ki tarah. Khoobsurat geet aap sunne ko ja rahe hain. Indwar ka likha hua Anuradha Podwal aur Suresh Wadkar ji ki awaazein. Mere pyare sunao, ye prem geet ka ek nagma hai, ek romantic song hai. और इस गीत के बाद ब्रेक की ओर और मिलते हैं आप सभी से फिर ब्रेक के उस पार, जबकि पेश करेंगे प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा दिल की आवाज हियर ऑन यू आर फनेट स्टूडियो रतनम।

रहा है देखो कोई, उड़ जा रहा है देखो कोई, सबके दिल है जागे जागे और सबकी आंखें खोई खोई, खामोशी करती है बातें, क्या समा है जैसे खुशबू, और देखो उड़ रही है कलियों में, गुजरी हो निंदिया में पलकों की कलियों में, सुंदर सपनों की ये बराते। और आखिरी में लता जी ने क्या गाए हैं कि कौन जाने कब चलेगी किस तरफ ये हवाएं, साल भर तो याद रखना ऐसा ना हो कि भूल जाएं इस रात की ये मुलाकातें, क्योंकि रातें मेरे प्यारे सुनने वालों नई पुरानी आते हैं जाते हैं, लेकिन हर एक रात कहती है कोई ना कोई कहानी। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत संगीत की देवी लता जी ने गाकर सुनाए हैं, फिल्म का नाम जुली। मेरे प्यारे सुनने वालों, इकल हिरवाल्डो और मारखरी जी दंकिवल से धन्यवाद, शुक्रिया आप दोनों के ऐप के लिए, और शुक्रिया दंकिवल, धन्यवाद भी हम कहेंगे। आईफी जहांगीर तमसदम, आप कैप के लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आप सभी को हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद कहते हैं। अच्छा, फिर 3 मिनटों ओवर 3 मेरे प्यारे सुनने वालों, और आपको मालूम रहे दिल की आवाज़ रात्रि में 11 बजे लाइव एंड आरएक्यूआर के स्टूडियो रोटरडम से हम पेश करने वाले हैं। बस आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका दुलार चाहिए, एक फिल्म की ओर आपको ले चलेंगे, ये फिल्म से दो नगमाएं निकालेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, और दोनों नगमाएं द ग्रेट योगेश गौर जी ने लिखा और पद्मा सखदेव। योगेश जी के बहुत सारे गाने हम चला चुके हैं अपने ये प्रोग्राम में, और ये दो नगमाएं जो है योगेश जी ने मिलकर लिखा है पद्मा सखदेव जी के साथ। दोनों नगमाएं भूपेंद्र सिंह, हाँ जी, दोनों नगमाएं भूपेंद्र सिंह गाएंगे, लेकिन पहला गीत जो है अनुराधा पौडवाल जी के साथ मिलकर गाएंगे। दोनों नगमाएं निकाल रहा हूं फिल्म जिसका नाम है साहस, आप भरपूर एंजॉय करें। इन दोनों नगमाओं के बाद आप सभी से फिर हम मिलेंगे, बस आप आंखें बंद कर कि इस जो दो गीत है

जाने कैसे लहराती हुई ये चंचल हवा चले। देखो मुझे बहकाने लगे ये नजारे खिले खिले, अब तो बन गई बावली ये नजर अब मेरी जुबान, और घने पैरों से जनती हुई बिखरी है किरण किरण, मन करे इन्हें चुन चुन के मैं रंग ढूंढ चमन चमन, ये तो है मेरे ये तो है मेरा मेरे दिल की जहां। और आखिरी में क्या गाए हैं कि दूर कहीं पर्वत के तले जिसे पलिए सूरज ढले, रंगों भरी चुनरी को जब ढरती ये ओढ़ चले, तब गगन के तले मन मेरा उड़ चले कहां, नीला सा झीला सही आसमां और ख्वाबों से फैली हुई वादियां। और उससे पहले मेरे प्यारे सुनो लो भूपिंदर जी का नगमा एक और हमने चलाए थे जो इन्होंने गाए थे अनुराधा पौडवाल जी के साथ, कि अब तुम हो हमारे और हम भी तुम्हारे हैं। दो खूबसूरत नगमाएं मेरे प्यारे सुनवालों, योगेश गौर जी ने लिखा और साथ दिए पटमा सखदेव, फिल्म का नाम साहस। मेरे प्यारे सुनवालों, हियर ऑन यू आर दिल की आवाज में। छोड़ दे चाहे जो भी हो मेरे प्यारे सुनवालों, आप कितना भी प्यार करो लेकिन जिंदगी इतनी खूबसूरत है, दुखों का आपको तो मालूम है, बहुत सारा दुखों को या दुखों का सामना हमें करना पड़ता है इस जीवन में। नीत रही ईद रही निसार्दख ए नीत आलस हाथ फनत लहदा किया, कभी धूप तो कभी छाओ, कभी सुख तो कभी, या यूं मुझे कहना चाहिए बहुत सारे दुख और कभी कभी सुख, लेकिन हिम्मत हमें नहीं हारना चाहिए। और खास करके उन पलों को जब दुख का सामना हमें करना पड़ता है, जो हार जाएंगे तो समझ ले क्या दन सत्कार है। और कभी कभी लोग, कौन नहीं चाहता है प्यार, सभी को प्यार चाह, मैं तो ये कहता हूं कि सभी को प्यार नजीब हो, लेकिन ऐसा हो कि छोड़ दे ये सारी दुनिया बस किसी के लिए, क्योंकि ये प्यार छूट गया है नहीं मिला है या किसी भी कारण, तो सब रुक नहीं जाता है मेरे प्यारे सुनने वालों, आपके जीवन नहीं रुक जाता है, जिंदगी रुक नहीं जाता है। लाइफ का दौर ये मुझ स्टर्क लाइफ है, ये मुझ खूं फेडर। मैं पेश करता हूं सेवा में इंदौर का लिखा हुआ एक तट बड़े गीत लता जी की आवाज में। मेरे प्यारे सुनने वालों, आईफी जहांगीर डांकीवाल आपके ऐप के लिए सुदाम आईफी जहांगीर जी, और स्वाख से मरखरी जी और हेरवाल्डो को हम धन्यवाद डांकीवाल कहना चाहेंगे। मफराव एंड मनेर बिहारी जी अजब्रेदा को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। संगीत की देवी लता जी को पेश करता हूँ।

छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये तो मुनासिफ नहीं। आदमी के लिए प्यार से भी जरूरी कई काम है मेरे प्यारे सुनवालों। प्यार सब कुछ नहीं होता है जिंदगी के लिए, बस मेरा यही आप सभी से यही कहना है कि हिम्मत कभी आप हारिएगा नहीं। प्यार में काफी लोगों को निराशा भी मिलता है, लेकिन प्यार सब कुछ नहीं मेरे प्यारे सुनवालों। आप कभी हिम्मत मत हारिएगा। प्रबेर आलतैत दौड़त खान, अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए, माता पिता के लिए। ये था लता मंगेशकर मेरे प्यारे सुनवालों, संगीत की देवी, जो इंदवर साहब जी का लिखा हुआ एक ग्रेट सॉन्ग, डर्ट भरे गीत संगीत की देवी ने गाकर सुनाए हैं। फिल्म का नाम सरस्वती चंद्र, और संगीत की देवी को फिर हम पेश करेंगे मेरे प्यारे सुनवालों। अब की बार शैलेंद्र जी का लिखा हुआ गीत जो मिलकर गाएंगे, द हार्ट ऑफ मिलियंस, मायती मुकेश जी के साथ, एन वार है पिकम तार है पिकम कि ओ मेरे सनम दो जिस्म मगर लेकिन एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम, ओ मेरे सनम। रिमेम्बर दिस इज यू आर मेरे प्यारे सुनवालों। हर जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते चेक www.ujala.net।

ओ मेरे सनम दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम। शैलेंद्र जी इनके हाथों से लिखा हुआ ये गीत हमने आप तक पेश किया है और मिलकर गीत गाए हैं संगीत की देवी लता जी और द हार्ट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश जी। फिल्म का नाम संगम, मेरे प्यारे सुनने वालों। और शैलेंद्र जी का एक नगमा अभी कुछ देर के बाद आप तक फिर हम पेश करेंगे। Of nee, dat gaan we nu meteen doen. Ja, laten we hem meteen doen. Even goed kijken hoor. Nee, we gaan het straks. Na een liedje komt nog een liedje van Shalindar Ji. Ik heb het even verkeerd gezet, ik moet het even goed zetten. Kyunki hum aapko sunane jaane wale hain ek nagma Lata ji aur Rafi sahib ji ka gaya hua mahan kavi shayar songwriter Rajendra Krishan ji ka ek romantic song From the movie मैं चुप रहूंगी। मेरे प्यारे सुनने वालों, कि कोई बता दे दिल है जहां क्यों होता है दर्द वहां, पेश करता हूं।

कोई बता दे दिल है जहां, क्यों होता है दर्द वहां। तीर चला के ये तो ना पूछो कि दिल है कहां और दर्द कहां। मेरे प्यारे सुनो लो, ये एक नगमा राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ, एक महान कवि शायर सॉन्ग राइटर और रवि साहब जी और लता जी की आवाजें। मैं चुप रहूंगी फिल्म का नाम। शैलेंद्र जी का एक नगमा और आप तक हमने वादा किया था पेश करने का, तो हम पेश करने जा रहे हैं वंस अगेन मोहम्मद रफी साहब जी और लता जी, और ये एक रोमांटिक सॉन्ग है मेरे प्यारे सुनने वालों, कि मुझे कितना प्यार है तुमसे अपने ही दिल से तुम पूछो वो।

मुझे कितना प्यार है तुमसे। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, शरेंद्र जी का लिखा हुआ मिलकर गीत गाए हैं संगीत की देवी लता जी और सुरों का बादशाह द लेजेंड पद्मा श्री मोहम्मद रफी साहब जी। फिल्म का नाम दिल तेरा दीवाना। प्यारे सुनने वालों, धुन आप सुन रहे हैं, इस धुन के साथ ये प्रोग्राम को आराम करते हैं और जब ही ये धुन हम दोहराते हैं तो मतलब ये कि आखिरी गीत हम सेवा में पेश करने जाएंगे और उस आखिरी गीत के बाद मेरे प्यारे सुन वालों, आप सभी से हम यहाँ आज्ञा लेकर रुखसत होंगे। उम्मीद और आशा करते हैं कि जिस तरह से आज का ये प्रोग्राम दिल की आवाज हमने सजाए हैं बनाए हैं, आप सभी ने भी सुनते वक्त भरपूर मजा ली है, एंजॉय की है। हम आप सभी से फिर मिलेंगे आने वाले शनिवार 22 तारीख ट्वीन ट्वीन तक और ख्रिस्टस मेरे प्यारे सुनो और रात्रि में 7 से 12 बजे पेश करेंगे लोकल प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर दिल की आवाज। अगले हफ्ते 27 तक और ख्रिस्टस को फिर आप सुन पाओगे। तो रहा फूल तो फिर खिलेंगे और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम फिर जरूर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज़। टेक केयर और रिमेम्बर आई लव यू ऑल।

जाते जाते भी हम लक्ष्मण जी को अर्ज इवनिंग धन्यवाद कहना चाहेंगे ऐप करने के लिए। और आप तो मालूम है कि लक्ष्मी जी हम सभी के दिलों में है। थैंक यू लक्ष्मण जी, एंजॉय।

दिल को मैंने दी कसम की ना धड़के कभी तेरे बिना। अमाल मालिक, हाँ अमाल मालिक और अरिजीत सिंह की आवाजों में आप गीत को सुने। उजाला रेडियो है ये।

मैं नाम मिलूंगी नजर हटा लो, लता जी की आवाज में इस गीत को आप सुने। और फिल्म का नाम प्यार का मौसम, फिल्म प्यार का मौसम का गीत उजाला रेडियो पर। और अब किशोर कुमार के साथ लता जी, फिल्म जोशीला का गीत।